0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा, खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: और विटामिंस दें आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 03459232860 03005858481।
1: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक, न्यू हेयर ग्रोथ, खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतरी में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, फालिज के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार में 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 03459232860।
0: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करदा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील, मुहासे, छाइयां और आंखों के गिर्द स्याह हल्के खत्म करे, आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजूद असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिंस दें आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से

0: बेवफा तेरी दीवानी है
1: अल्लाह, दिल लगाने का नतीजा मिल गया
0: है अल्लाह,
1: दिल लगी में जो दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। तुम जो हंसते हो तुम्हारा क्या, तुम जो हंसते हो तुम्हारा क्या, हम जो रोते हैं हमारा दिल गया। तुम जो हंसते हो तुम्हारा क्या, हम जो रोते हैं हमारा दिल गया।

0: प्यार की एक दुनिया लेकर
1: मोहब्बत समेट कर
2: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

आला हिफाजत राखड़ी। पेखावर हाई कोर्ट द खैबर पख्तूनख्वा वज़ीराला सुहेल अफरीदी ता नोटिस जारी कर दे। द हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हवाले से जवाब हम गुख्त दे। पेखावर हाई कोर्ट द सियासी हल उजलो जलसो जुलूसों द पारा द सरकारी वसायलो मुबैना इस्तेमाल मुतालिक तौहीन अदालत केस की द खैबर पख्तूनख्वा वज़ीराला मोहम्मद सुहेल अफरीदी ता नोटिस जारी कर दे और जवाब हम गुख्त दे। पेखावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मोहम्मद अतीक शाह पमशरे की दुकसीजा बेंच और दना कड़ेदा चे वैली दी वज़ीराला ख्वाबा सिकस्मा सियासी सरगर्मों द पारा सरकारी वसाइल इस्तेमालो बांध इल्जाम हम लगवले शिवे दे। दादी हवाले सरा द वज़ीराला लखवा तरदी दमास किस्मा अमल और जवाब न दिवरकले शिवे। जुनूबी वज़ीरिस्तान अपर शरवांगी इलाके के दादोडुल तरमंजा दाडजो मुकाबले शिवेदा कम की ज्योतन व मुकाब हक रसी दे दी वलियोतन जख्मी शिवे दे। द पुलिस दराऊ तरमखा पा शरवांगी की दादोडुल तरमंजा दाडजो दा पेखा हक महाल दरमस्त शिवेदा चरते ची द्वान वस्तवार डलू पा योबल डजी कड़ी दी कम की ज्योतन व मुकाब जख्मी शिवे वलिबल तन व मुकाब हक रसी दे दी। द DPU जुनूबी वज़ीरिस्तान अपर मोहम्मद इशफाक खान तरमखा द पेख पर महाल यो वसलवाल तन बमुका शरवांगी चेक पोस्ट ना निवले शिवे दे वाले जख्मी शिवे तन बमुका DHQ अस्पताल तहम रसवले शिवे दे। जुनूबी वज़ीरिस्तान लुविर इलाके वानकी द गनो द काश तजुर्बा दाड़ी रखी तरीके सरा कामयाब शिवेदा चुरुस्तु दासिमी खलको तबा जरी शोबे सरा पानूर पश्तून के हम द काश वाले रिहायशी द तारण इलाके रिहायशी उसी बांदी पा वानकी द गनो खरकड़े दे कमाचियो कामयाबा तजुर्बा शिवेदा खलको वेनादा चिदगा फरीद नुबितन द खपल जान द पारा द गने खरकड़े चुरुस्तु दगा कामयाब शिवेदी आयोख कामयाब फसल ते जुड़ शिवे दे पहला की खुशहाली फरशिविदा और दारातुन की वक्त पारा द गनो कर योलिय तजुर्बे रोड़ो सरबा द गनो फसन नोर हम सेवाशी। यूक्रेन बांदी द फिजाई हमलों पर नतीजे की द मरगुन शुमेरा द्विश तरह से दरेदा द शुमाली चरनी ह्यू इलाका की प्रोत यूक्रेन खार यल की बांदी द तिरशपी ना वख्ता रूसी मिजलन हमले शिवेदा चरुस्तु दामलू शुमेरा द्विश तरह से दरेदा द चलसिया ग्याओ गवर्नर वेनादा चेप द्विश तनानो पमड़ुन की पिंज माशुमान अहम शामिल ली द सलूर तनानो हादिसा बांदे पमुका पहक रसी दिल दी वलनूर यो तन फम पमुका अस्पताल के सावर कड़ेदा दिवर दिश दरुस हमला डेरा खतरनाक खुदरेश हुआ कम चीज यूक्रेन सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दावा करदा चिके 101 मिसाइल सरा पा प्राइल को की वदाने पा नखशिविदी चुरुस्त हगा पा बश पलटवल विजाड़ी शिविदी और टोल टाल दो इस्तनान हम हलाक शिविदी और सुलान दिकू दा लूब खबरना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB द पाकिस्तान सुपर लीग 12वें एडिशन तारीखों बाकायदा ऐलान हम उकड़ो। द मीडिया तरमखा HBL PCL 12वें एडिशन बाद मार्च 14 मिनटा शुरू कीगी कुंभ द मई द द्वे मिनट ब्रदर विष्टो पूरे लुबोलीशी पा इवेंट के बाद मुसलसल द्वेम जलबान अत टीमों बरखाखली द PCL द विंडो गवर्निंग काउंसिल और फ्रेंचाइज सरबा पशरीकवाल तो गरुस्तो खत्मी फैसला कौलीशी द PCL गवर्निंग काउंसिल वंडबा द सितंबर पाड़ुम्बे नेटेना लंदन के शुविदा कम के चिबा टोल टाल अतो फ्रेंचाइज मालिकान और नूर गुड़ हम पा मुकम्मल तोगा गडुन खड़े हो बिलख्वा हांगकांग सिक्स द्विदराज पगिश्तम द्रोजने टूर्नामेंट रवान म्याज के बाद अक्टूबर पादर्शी मनेटा शुरू कीगी क्योंकि बची दिफाई चैंपियन पाकिस्तान रिवायती हरीफ हिंदुस्तान सरा द खे मुकाबले रुस्तो द अक्टूबर पदर्श मनेटा मखामख कीगी। क्रिकेट हांगकांग तरमखा हांगकांग सिक्स द्विशतम एडिशन टूर्नामेंट के बाद टूल पिंजीश मिचुना द अक्टूबर दरिशम नेटेना द 1 नवम्बर पोरे लुबोली कीगी। पाकिस्तान बखपल लुम्बी में द हिन्दुस्तान सरा लुबवी अवश्य नजर द मौसम पाड़ा द महकमे मौसमियाओं तरमखा द खैबर पख्तूनख्वा पा जुनूबी बरखो ठांग करक ढी खान मिराली मिरांचा रजमक खैबर हंगू बनु अनुरशो ख्वासी मुखी दहरत दर्जा योकम 30 डिग्री सेंटीग्रेडा और हवा के जन्मे तनासुब सलूर 55% रिकॉर्ड करे शिवे। हमदा गशान द खैबर पख्तूनख्वा पा शुमाली बरखो शांगला बेशाम कोले पालस बटग्राम ताकोट गाजी अनुरशो ख्वासी मुखी दहरत दर्जा 20 डिग्री सेंटीग्रेडा और हवा के जन्मे तनासुब 25% रिकॉर्ड करे शिवे दे। हमदा गशान नरनन माखाम 19 मिनट कम पाशपक बजी रुप शिवे और सवा जहर 43 मिनट रपासा पशपक बजीबा सिर वही। हम दाऊ तरदी तमाम हिम न्यूज अपडेट चितासुअर दो अहमद जार ना दानूर खबरों और मालूमात पर अमन रेडियो नेटवर्क सरों से उस वर्ग अहमद जाल लीजिए दलवी अल्लाह पामान।

सलाम वालेकुम निजाम भाई, क्या हाल है? जब से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है रोजाना सुनती हूँ। साले बीबी शमलाई से बहुत शुक्रिया साले बीबी, अल्लाह आपको खुश रखे।

0: हाव नन्रा तडीर पमीना गोरा चेद सबाप जळगीना वियर मानूना
1: यप तूर खारी पमख पनाक जी दुनिया के बिनंगे तपरी खुद मा
0: औ बरांदी नूर हम पुशी बूशी औ जानन थावद थावद राख डी जवाबूना
1: ये कबर सुरे तख्ती पमाती कननावा बैल नरा पासीना
0: औ दुनिया पही छनर वानेगी जमा उस्ता पुजदाए बरवान शीना
1: ये कबर सुरे कैसी गोरम के मैं बेपाई अडू किस्ते कखार शूना
0: मा बदमिनी औजान सातो लो यार द हिंदवानु जादू गुरु

0: गलती हुई तो माफ करना।
1: वाह वाह क्या बात है यार।
2: नेक्स्ट मैसेज ऑफ द शो आज, जब इंसान ये सोचना छोड़ दे कि लोग क्या कहेंगे और ये सोचना शुरू करे कि अल्लाह अल्लाह क्या कहेगा और मेरा दिल क्या चाहता है, तभी सुकून मिलता है। थैंक यू। वी स्पेंड अवर होल लाइफ, हम अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं थिंकिंग अबाउट व्हाट विल पीपल से इन द इन ऑल दे से इज इन इनहेलिजन। वही ये मैसेज में इंग्लिश में, लेकिन मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा। विमंग ठूल जिंदगी, हमने सारी जिंदगी इस सोच में ही गुजार दी कि लोग क्या कहेंगे और आखिर में लोग कहते कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह की तरफ से आए हुए थे और अल्लाह की तरफ हम चले गए। वाह वाह। नेक्स्ट मैच ऑफ द शो वाज ओह वाव, हे माधु बटेग्राम के होसम डियर दी वाला निष्ठा और मिस्टर ओके थैंक यू। I can't say singer. I'm blank for you, okay? Next message of the show is Zalzala. हाँ, अदर बड़े एग्जाम्पल्स यू बांधी पर 8 अक्टूबर 2025 के शिकम ने जलजले रगले और पहाड़ का वक्त के द बड़े एग्जाम दिसी मेरी मुतासिर कड़ी बाग हॉस्पिटल अगा स्कूल्स वगैरह वो कच्चे कम दे द बड़े एग्जाम दिसी में हाँ कच्चा कच्चा कोरोना दर थोड़ी मुतासिर कड़ी। अल्लाह पाक दे रहम करम फजल हो कि अल्लाह पाक इंसान तक मोहलत वरकई मोहलत वरकई और की खुदागी नबाद दे बड़े ग्राम सिम खल गड़ी ज्यादा सरकश शिवी दे अल्लाह पाक खैर कहीं अल्लाह पाक दे से मुसलमान नहीं करने ग्रोन अब शो के दे मखे पे वर्जु वर्सर वर्सर अंगा पे तशर पे चिन मस्तानी खंदागन हो हकीकत से कम ने खबर लाजिमी आई। अस्सलाम वालेकुम सालार भाई यानी माद भाई 8 अक्टूबर 2005 के अर्थ क्वेक शिवे वो बाय हम देख शान देखे दा और क्वेश्चन दारे जलजला वाले राजी सवाल पैदा की।
0: बिल्कुल
2: सवाल पैदा की कि अर्थ क्विक वाले राजी व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दावा है कि इंसान गुनाह न करे।
0: बिल्कुल
2: इंसाना एक गाफिल रावीक्षा पर कम सोचो पर कम खोबनों के यो पॉइंट। सेकंड पॉइंट से कम दिया का दादे से द अर्थक्वेक साइंटिफिकली चिकल मंगवायो वे द अर्थ से कम दिया कम ज़मीन का चिदा द दिमंग सरा द्रीति होने दी 1, 2 और 3 यो मंग सरा इनर दी यो मंग सरा मेटल लेवल मंग सरा आउटर दे पदीके पके मंग सरा प्लेट लगी दिल्ली आओ देखे दिना जी कम दी लावई आओ अगर लावा ची कम दी आगे तो वाल्की ने पेगलिस क्यों लिखी दगल आवाज से पके में एरिया की दग ए मोज ओप मस्ताई की राशि दा पगुसा ओप कहर की राशि नो दा लावा ची कम दी दा जोर कई साइंटिफिकली मंग दा से वायु और दा लावा ची कल जोर वकी दा प्लेट रगड़ाउशी दा ददी दो बजे हो मंग चूंकि मुसलमान आनी हो मंग बस साइंटिफिकली चिकन प्रूफ देगा मंग साइड देखो मंग इस्लामिक तराशी जलजला जिक्र आजी चीज मंग गुनाहों ने सेवा शिदा हागे लवाजी।